जी हाँ दोस्तों, आज की सुबह इस्तकबाल करने आ पहुंची है आपके दरों दीवारों पर। मैं हूँ आपकी दोस्त सविता, 107 FM रेनबो नॉन स्टॉप गपशप पर, और रहूँगी पूरे आपके साथ 11 बजे तक, यानी एक घंटा हम गपशप करने वाले हैं नॉन स्टॉप। क्या गपशप करेंगे ये तो बताऊँगी, लेकिन फिलहाल तो मेरी जिंदगी में आपको सुनवाऊंगी।

0: जिंदगी में कोई अजनबी ही होता है हम सब की, जो मन पर खटखटाहट देता है। जी हाँ, बिल्कुल, वो आपके दिल में चुपके से आ जाता है, कई बार थपथपाते हुए या कई बार चुपके से, और बन जाती है, हो जाती है उससे जान पहचान, जैसे कि हम और आप। बिल्कुल, पहले अजनबी थे, अब भला कहाँ है अजनबी। आप हमें जानते हैं, हम आपको पहचानते हैं। दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप की, फिल्म अजनबी के इस गीत से, कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज़ों से। एकांत, वीराना, सूनापन, खंडर, भला किसको पसंद है? आपको पसंद है? मुझे लगता है कि नहीं, किसी को भी खंडर, सुनापन, एकांत, वीरानापन पसंद नहीं होगा। हाँ, कभी कभी हम अपने अपने कोने समेट कर कहीं बैठ जाते हैं, कुछ यादों में खो जाते हैं, लेकिन दोस्तों, इतिहास की जो अनगिनत कहानियाँ हैं ना, वो सिमटी पड़ी हैं, वो बिखरी पड़ी हैं इन्हीं खंडरों में। एक एक ईंट, एक एक दीवार गवाह है बनते बिगड़ते भाग्य की, राज्यों के, देशों के, उगते ढलते सूरज की, लोगों के उत्थान की, पतन की। जी हाँ, हर तारीख अहम है इतिहास में। ऐसे ही इतिहास को चलिए आपके साथ साझा कर लेते हैं आज के दिन के सेगमेंट में।
1: आज के दिन,
0: तो आज के दिन अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हमारे इतिहास में। 1782 में जॉर्ज वाशिंगटन ने युद्ध में घायल सैनिकों को सम्मानित करने के लिए बैज ऑफ मिलिट्री मेरिट की स्थापना की, जो बाद में पर्पल हार्ट का पूर्ववर्ती बन गया। इसी दिन 1819 में बायोका का युद्ध हुआ, जो साइमन बॉलीवर के नेतृत्व में हुए स्पेनिश अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक विजय थी। विज्ञान के क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका की ऊपरी ग्रेट लेक्स में यात्रा करने वाला पहला जहाज ले ग्रिमफोन 7 अगस्त 1689 को ही रवाना हुआ। इसके अलावा यह तारीख 1933 में हुए दुखद सिमेले नरसंहार के लिए भी याद की जाती है दोस्तों, जिसमें इराक में 3000 से अधिक असीरियन मारे गए थे। इनमें से प्रत्येक घटना ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। ये थे आज के ऐतिहासिक तथ्य जो हमने किए आपके साथ साझा। दोस्तों, आज के दिन खास हम बताएं, अवींद्रनाथ टैगोर का भी जन्म हुआ था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक और प्रमुख थे, जिनका जन्म 1871 को हुआ था। इसके अलावा वे भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के प्रमुख प्रणेता थे। उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की, जिसने आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास में योगदान दिया। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के कलकत्ता के जोरासांको में गुणेंद्रनाथ टैगोर और सौदामिनी देवी के घर हुआ था। उनके दादा गिरीन्द्रनाथ टैगोर राजकुमार द्वारकानाथ टैगोर के दूसरे पुत्र थे। टैगोर परिवार के इस प्रतिष्ठित सदस्य के कवि रविंद्रनाथ टैगोर के ये भतीजे थे। उनके बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर भी एक कलाकार थे। तो दोस्तों, जन्म हुआ था इनका, साथ में आज जन्म हुआ था हमारे प्रसिद्ध पार्श्व गायक किसका, बताऊंगी, पहले सुनवाऊंगी एक गीत।

जी हाँ दोस्तों, ये दिल कह रहा है कि हम जन्मदिन मुबारकबाद दे दें हमारे प्रिय पार्श्व गायक सुरेश ईश्वर वाडेकर जी को। जी हाँ, आज है उनका जन्मदिन। बॉलीवुड में अपने संगीत की धुनों से हर किसी का दिल मोह लेने वाले सुरेश वाडेकर का आज ही के दिन जन्म हुआ था। दोस्तों 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे सुरेश वाडेकर की गायकी का शौक उन्हें बचपन से ही रहा और अपनी गायकी से उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे हिट गाने दिए जिसके बोल आज भी लोगों की जुबां पर सुने जा सकते हैं। हर किसी के दिल पर राज करने वाले सुरेश वाडेकर। महज 10 साल की आयु में संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की थी। उन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि मराठी के साथ कई भाषाओं की फिल्मों में अपनी गायकी का प्रदर्शन करके सभी का दिल जीत लिया। फिल्मों में गाने के अलावा उन्होंने भजन भी गाए। रविंद्र जैन ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पहेली में उन्हें पहला गीत बृष्टि पड़े टाकुर टुकुर गवाया था और जयदेव ने उनसे फिल्म गमन का जो गज़ल थी सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है ये गीत गवाया था। इसके बाद तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडेकर का विशेष लगाव था और वो उनसे बहुत स्नेह करती थी। सुरेश वाडेकर भी लता मंगेशकर को गुरु की तरह सम्मान देते थे। लता मंगेशकर ने जब सुरेश वाडेकर की आवाज़ सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से सुरेश वाडेकर की आवाज़ सुनने और उन्हें मौका देने के लिए कहा। लता मंगेशकर की बात मानकर जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सुरेश वाडेकर का गीत सुना तो उन्होंने उन्हें एक सिद्ध सीखे हुए गुड़ी गायक के रूप में महसूस किया। साल 1981 में सुरेश वाडेकर प्यारेलाल ने सुरेश वाडेकर को लता मंगेशकर के साथ फिल्म क्रोधी में ड्यूएट गाने के लिए उन्हें मौका दिया। लता मंगेशकर ने जब पद्म पुरस्कारों की समिति को लिखकर अपनी उनसे पसंद जाननी चाही तो उन्होंने सुरेश वाडेकर के नाम की सिफारिश भी की। दोस्तों सुरेश वाडेकर को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। सुरेश वाडेकर ने मेरी किस्मत में तू नहीं शायद मोहब्बत है क्या चीज़ जैसे हिट गाने गाकर राज कपूर के दिल पर भी राज किया। उन्होंने राज कपूर की फिल्म हीना राम तेरी गंगा मैली प्रेम ग्रंथ में भी कई हिट गाने दिए। तो दोस्तों सुरेश वाडेकर एक महान गायक कलाकार थे और हैं। हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और हम आगे भी उनके गाने सुनते रहेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आइए सुरेश वाडेकर की आवाज़ में ही सुनते हैं एक गीत उनको याद करते हुए।

मोहब्बत है क्या चीज़? मोहब्बत को क्या डिफाइन किया जा सकता है दोस्तों? मोहब्बत तो हर बंदे से होती है, चाहे वो सिर्फ मानव जाति हो, बल्कि हमारे जीव हैं, जंतु हैं, प्रकृति है, कण कण में मोहब्बत बिखरी पड़ी है। तभी तो मुझे मोहब्बत हो गई है इस महीने से दोस्तों। इस महीने की बात करूं तो मैं सावन के महीने की बात कर रही हूं। जी हां, सावन का महीना प्रकृति के लिए बेहद सुहाना, हरा भरा और जीवन से भरपूर होता है। मुझे ये मौसम बहुत पसंद है, बारिश को देखना, लेकिन कितना देख पाती हूँ ये अलग बात है। जी हाँ, इस दौरान लगातार बारिश से धरती की प्यास

0: आस बुझती है, चारों तरफ फैली हरियाली मन को मोह लेती है। मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है ना, वो वातावरण को महकाती है। दोस्तों, चारों तरफ सूखे पेड़ पौधे, मैदान सब नए पत्तों और हाग घास से हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा और घटाएं बादल में, ऊपर आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, रिमझिम फुहारें और तेज बारिशें होती हैं। साथ ही दोस्तों, सौंधी खुशबू पहली बारिश के बाद सूखी मिट्टी की जो एक खास और भीनी खुशबू आती है, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक जीवन में नया संचार लेकर आ गई है। नदियाँ तालाब पानी से भर जाते हैं, जीवों को नया जीवन मिल जाता है, पक्षी उल्लास से चारों ओर चहचहाने लगती हैं। तो सावन जो होता है ना, वो चारों तरफ जो वातावरण है ना, उसको मदहोश सा कर देता है। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि क्या बात करूँगी, क्या विषय है आज का। तो जब सावन की इतनी सारी दास्तान छेड़ी है, तो आपसे मैं सावन की ही बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आपने एकदम अंदाज़ा सही लगाया, बिल्कुल। मैं पूछने वाली हूँ कि इस सावन का जो ऋतु है ना, सावन का जो महीना है, वो आपको कैसा लगता है? सावन में आपको वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? उसका खान पान यानी खाने पीने को जो डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, या फिर चारों तरफ की हरियाली, या फिर जो सावन के सोमवार रखे जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही सात्विक माह भी है, इसमें फ्रूट फलाहार ये सब भी किया जाता है, खाया जाता है, या फिर कांवर ले जाते हुए भक्तगण जो अपनी अपनी आस्था के साथ मीलों पैदल चलकर भोले पर अपने शिव पर जल ढालने जाते हैं। तो आपको सावन में वो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, यानी आकर्षित करती है, आपको पसंद आती है और आप सावन का इंतज़ार करते हैं? या फिर दोस्तों, सावन में बहुत सारे तीज त्यौहार भी होते हैं, कौन से त्यौहार होते हैं वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं चलूंगी कोलकाता कल्चर की ओर कि कोलकाता में आज क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बताऊंगी।
1: कोलकाता कल्चर।

दोस्तों, कोलकाता कल्चर में आज हम आपको बता सकते हैं कि हथकरघा और सांस्कृतिक संवाद होने वाला है अभिन्द्रनाथ गैलरी ICCR कोलकाता में सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को। यह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बंगाल के पारंपरिक वस्त्रों, प्राकृतिक रंगों और हथकरघा उद्योग के वर्तमान और भविष्य पर प्रतिष्ठित बुनकरों पर विशेषज्ञों के साथ विशेष बातचीत है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पार्क स्ट्रीट पर 4:30 बजे भी साहित्यिक चर्चा होगी। श्याम श्रीनिवासन के साथ एक विशेष साहित्यिक बातचीत और सत्र का आयोजन है। इसके अलावा दोस्तों, साइंस सिटी कोलकाता में सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक किताब प्रेमियों के लिए एक ही छत के नीचे विभिन्न शैलियों, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बच्चों के लिए पुस्तकों की हज़ारों किताबें एक तयशुदा बॉक्स मूल्य पर उपलब्ध हैं। तो ये हैं आज की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियाँ जो हमने की आपके साथ साझा। और फिलहाल तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं एक गीत कुणाल गंजावाला की आवाज़ में सुनवाऊँ।

0: फिल्म शीशा का ये गीत कुणाल गंजावाला की आवाज़ में माया गोविंद गीतकार और संगीतबद्ध किया सैन ब्रदर्स ने। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो,
1: वो क्या कहते हैं। हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सविता जी।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपका नाम बताइए।
2: मैं मुनीरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सागरेल होड़ा से।
0: मुनीरुद्दीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
2: मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
0: जी,
2: सुबह सुबह इतना बेहतरीन गाना बजाने सुनाने के लिए।
0: जी धन्यवाद, आपको अच्छा लगा।
2: इतना रियल टॉपिक लाने के लिए
0: जी।
2: और बरसों में सबसे पहले याद आता है इलिश का।
0: इलिश मछली, अच्छा।
2: सबसे ज्यादा इलिश ये बरसों में ही मिलता है। और मानुष का साध में खरीद कर सके हर टाइम तो मिलता है, लेकिन इतना वर्षों में जिस पैसों में मिलता है वो उसी तरह मिलता नहीं है। और खिचड़ी और इलिश हमारे फेवरेट लंच है। और हरियाली तो है और फेस्टिवल है जो रथ है, रथ का जो मेला है, मेला में जो हमारे पेड़ मिलता है हमारे गाज बसाने के लिए, वो मेरा अच्छा लगता है। बचपन से मैं यही देखता है जो रथ मेला से जो हरी तरह खबर मिलता है, हरी तरह खिलौना मिलता है, लेकिन गाज जो मिलता है वो ये रथ मेला में खास करके मिलता है। और लोगों का जो इच्छा आता है वो गाछ का बताने के लिए, और खास करके रात का टाइम मिलता है
0: जी।
2: मैं यही बोलना चाहता हूँ।
0: तो मनोरुद्दीन जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मनोरुद्दीन जी ने बताया कि इलिश माछ और खिचड़ी ये इनका फेवरेट फूड है बरसात में, और बरसात में रथ भी आता है। दोस्तों बरसात में हमारे यहाँ बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं, जैसे कि मनोरुद्दीन जी ने कहा कि रथ यात्रा से शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद हमारे यहाँ पर शिव की जो पूजा की जाती है, श्रावण मास के सोमवार आते हैं, कांवड़ ले जाते हैं लोग। इसके अलावा हमारे यहाँ जो त्यौहार हैं तीज का त्यौहार, तीज जो है स्त्रियों के बीच में और नव युवतियों के बीच में महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाला ये त्यौहार है, जिसमें वो ग्रीन ग्रीन कपड़े पहनते हैं, जो कि हमारी प्रकृति है ना, हरी भरी वसुधा भर जाती है हरे भरे पत्तों से, हरी भरी घास से, रंग बिरंगे फूलों से। तो उसी से मेल खाते हुए रंगों की वेशभूषा हमारे यहाँ जो नई नवेली दुल्हन है या फिर युवतियाँ हैं, भाभियाँ हैं, बहनें हैं, सब पहनते हैं दोस्तों, और हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, और तीज के त्यौहार पर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, इसको वो सब मनाते हैं। इस बार तीज जो है 15 तारीख यानी 15 अगस्त को होने वाली है। इसके अलावा एक और त्यौहार है जो भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार है, वो है रक्षाबंधन। तो ये भी सावन मास में ही पड़ता है। इसके अलावा हमारे देश प्रेम पर आधारित हमारा जो पर्व है 15 अगस्त भी श्रावण मास में ही पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, हम बात करने वाले हैं श्रावण के महीने में। आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि श्रावण मास में आपको वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, या चाहे वो खाने की चीज़ हो, पहनने की हो, घूमने की हो, कुछ भी हो, जो भी आप शेयर करना चाहें अपने सावन से, बरसात से जुड़ी बातें, वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आ सकते हैं हमारे साथ। एक दोस्त हमारे साथ आ रहे हैं, तो देखें वो क्या कहते हैं।
3: हेलो,
0: हेलो, आप कौन बोल रहे हैं?
3: शोभिक शौकर बोल रहा हूँ दीदी, कस्बा से।
0: हाँ शोभिक जी बताइए, आप ऑन एयर हैं, क्या कहना चाहते हैं
3: आप? देखिए दीदी, मैं जो बोलना चाहता हूँ वर्षाकाल में, सर आपने तो बोल ही दिया, ओ अपने 15 अगस्त वो जो है, मैं बताऊंगा अपना रक्षाबंधन भी बोला था
0: जी,
3: मैं बोलूंगा वो जन्माष्टमी, जन्माष्टमी भी आता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमारा सामने में एक मंदिर है, राधा कृष्ण का एक मंदिर है, वहाँ पर सकल से मैंने सुबह से ही कोई ना कोई उत्सव होता ही है। देखिए वहाँ पर जो विशेष कर हम लोग कोई बंधु बांधव में घर में जाते हैं तो वहाँ पर मीठा मीठा जो खाना मिलता है, मालपुआ बोलिए और ताले बड़ा बोलिए, बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
3: उसके बाद में जो आता है दीदी, मैं बोलूंगा वो विश्वकर्मा पूजा। उस टाइम में हम लोग को तो तीन चार दिन पहले बचपन में हम लोग वो गंजा देते थे वो सूता में, और घुड़ी भी उड़ाते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। सबसे बड़ा जो है

0: रहता है वर्षाकाल में सबसे बंगाली का जो है वो फुटबॉल खेलना, वो हम लोग फुटबॉल फुटबॉल भी खेलते थे उस टाइम में, बहुत अच्छा लगता था। और स्कूल में हम कभी कभी रेनी डे हो जाता था तो हम लोग उनको जो खाता होता है ना उसमें हम नौका बनाते थे और भाषा देते थे, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद में हम लोग पिटाई भी पड़ता था क्योंकि हम लोग को जो उनको खाता जो है हम लोग को चीर कर हम लोग को नौका बनाया था, उसको टीचर से बहुत डांट मिलता था, मम्मी से पिटाई भी पड़ता था। अपने एक नॉस्टैल्जिक में हम लोग को एक भाषा दिया है क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं छोटा सा ही मैं बोलूंगा दीदी, थैंक यू
1: शौविक जी। तो शौविक जी ने कहा कि हम रेनी डे में अंक खाता को फाड़ करके और कागज की नाव बनाया करते थे। दोस्तों वो कागज की नाव बनाना जैसे अब हम भूल गए हैं, शायद अब हम अपना वो बचपन भूल गए हैं कि जो एक समय में हमने गुजारा है कि पेड़ों की डालों पर चढ़ करके उसके ऊपर झूलना और झूले भी पड़ा करते थे। जो मैं बात करने वाली हूँ, बात कर रही थी तीजों की, कि तीजों के दिनों में जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, वो पेड़ों की डालों पर झूले डाल करके झूले झूला करती थी, लोकगीत गाया करती थी और बागों में वो लोग आपस में मिलकर लोक नृत्य भी किया करती थी। शायद वो परंपराएं अब कहीं लुप्त सी होती जा रही हैं, कहीं कहीं अभी हैं भी। अभी जैसे शोभिक जी ने कहा कि नॉस्टैल्जिक हम हो गए, बिल्कुल दोस्तों, श्रावण मास एक ऐसा महीना है जहां पर अभी उन्होंने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी तो त्योहारों का सिलसिला पूरा श्रावण मास में चलता है। हम कुछ ऐसी ही बातें करने वाले हैं श्रावण मास की, क्योंकि ये जो त्यौहार है ना वो चारों तरफ इठलाती जो टहनियाँ हैं, उफनती नदियाँ हैं, मेघ मलार की अटखेलियाँ हैं और प्राकृतिक तान छिड़कर पशु पक्षी मानव सबको झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो सावन में ऐसा लगता है कि प्रकृति नहा ली है और उसमें सूरज इठला रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही कुछ मनोरम दृश्य होता है। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ।

0: देखिए इधर सावन आया है, उधर हमारे कॉलर का कॉल भी आ गया है, तो देखते हैं वो क्या कहती है। हेलो हेलो
1: हेलो
2: हेलो
0: हेलो। हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
2: सविता जी, मैं श्याम कुमार चंचल बोल रहा हूँ।
0: जी श्याम कुमार चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए कैसे हैं?
2: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आई हैं आप सावन के लिए, और अभी तो बरसात काफी पड़ रही है।
0: जी
2: आपने सब कुछ कहा, लेकिन मुझे भी एक बात याद आ गई, वो कहना जरूरी है।
0: जी बताइए।
2: तो मैं कहना चाहता हूँ कि बरसात की बारिश में चाय और पकौड़ी की भी याद आती है हमें।
0: बिल्कुल, चाय और पकौड़ी तो मतलब मस्ट है, जरूरी है।
2: तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
2: और इसी तरह प्रोग्राम को चलाइए, और एक अच्छा सा फड़फड़ाता हुआ कोई गीत बजा दिए सावन का।
0: जी जरूर सुनवाऊंगी मैं, और हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ श्याम सुंदर जी जुड़े और उन्होंने कहा कि चाय पकौड़ी, तो दोस्तों वातावरण ही कुछ ऐसा खुशनुमा हो जाता है कि घर में जैसे कोई नया मेहमान आया है, और उसके मेहमान के आने से घर आंगन सब कुछ जैसे सुहावना हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही बरसात में बारिशों के आने से हमारा घर का मौसम भी सुहाना हो जाता है, और हम ऐसे में तरह तरह के पकवान बनाने लगते हैं और खुद ही अपने परिवार के साथ एंजॉय करके खाते हैं, और तीज त्यौहार जो भी आते हैं हम उनको भी एंजॉय करते हैं। बातें तो सावन की ढेर सारी मुझे कहनी थी और गाने भी मैं बहुत सारे लाई थी, लेकिन लेकिन लेकिन वक्त हमें कह रहा है कि अब इंतज़ार मत करो, आखिरी गीत बजाओ और अपने दोस्तों से लो विदा। तो दोस्तों 11:10 पर लो आ गई उनकी याद कार्यक्रम में मैं आपसे मिलने वाली हूँ, और 11 को मैं एक बार फिर मिलूँगी इसी कार्यक्रम यानी नॉन स्टॉप गपशप में, तो इंतज़ार करिएगा और सुनना मत भूलिएगा। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ सावन की बारिश में भीगेगा जरूर, हो सके तो कागज़ की कश्ती बनाकर उसे बहाने की भी चेष्टा कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ जब आप बच्चे हो जाते हैं तो हमारा मन भी भागने लगता है, और अब मैं भी भाग रही हूँ क्योंकि वक्त हमें कह रहा है कि कुर्सी छोड़ो सविता और चलो टाटा बाय बाय कहते हुए, तो बस हंसते रहिए आप।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर।

107 FM रेनबो दिल से दिल तक के सभी श्रोताओं का, सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है तीन का तड़का। 3:08 और मैंने स्वागत किया आपका अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ के साथ, और इस गाने को मैंने चुना फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से। इसे लेखा कुमार ने, संगीतबद्ध किया शरीब तोशी ने। और दोस्तों मैं आपको क्या समझाऊं कि मैं आज आपके साथ सिर्फ 3:30 तक हूं, क्योंकि 3:30 से आपके सामने पेश होगा एक प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। पर कोई बात नहीं, जितना है उतना ही सही है ना। 3:30 तक हम भरपूर आनंद लेंगे इन बेहतरीन गीतों का। और बता दूं एक बार फिर, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का। फिलहाल चलते हैं FM रेनबो परियोजना प्रस्तुति की ओर।

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: आज मैं आपके सामने वो योजना की बात करने जा रही हूँ जिसका सीधे हमारे खेतों की सेहत से जुड़ा है, जो हमारे खेतों की सेहत से जुड़ा है, जिसका असर फसल पर पड़ता है और जिसका लाभ सीधा किसान की जेब तक पहुंचता है। जी हाँ, आज का विषय है, आज की योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। हम अक्सर कहते हैं जैसी मिट्टी वैसी खेती, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी खेत की मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता? इसी सवाल का जवाब देती है भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। योजना का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की नियमित जांच, संतुलित उर्वरक उपयोग, लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई थी। तब से लेकर आज तक करोड़ों किसानों को उनकी मिट्टी की सही जानकारी कार्ड के रूप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब सवाल उठता है कि ये योजना काम कैसे करती है? साथियों, इस योजना के तहत खेत की मिट्टी का नमूना लिया जाता है। नमूने के वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जांच होती है। मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन जैसे पोषक तत्वों की मात्रा मापी जाती है। इसके बाद किसान को मिलता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसान को बताया जाता है मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, किस फसल के लिए कौन सा खाद उपयुक्त है, कितनी मात्रा में खाद डालनी चाहिए, जैविक खाद का सुझाव, मिट्टी सुधार के उपाय, यानी अब खेती अंदाजे से नहीं जानकारी के आधार पर होती है। इस योजना से किसानों को कई बड़े फायदे मिलते हैं। उर्वरकों की अनावश्यक बर्बादी रुकती है, खेती की लागत इस कार्ड से कम होती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, बता दूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, असम, गुजरात सहित भारत के हर कोने में पहुंच रही है। आज के डिजिटल युग के में मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी डिजिटल रूप में उपलब्ध है। सॉयल हेल्थ कार्ड पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना कार्ड आप देख सकते हैं। और मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं है दोस्तों, वो हमारी खेती की आत्मा है। अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल स्वस्थ होगी और किसान खुशहाल होगा। और आज की FM परियोजना प्रस्तुति यहीं तक।
0: रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

हमारी अधूरी कहानी का टाइटल ट्रैक आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में, रश्मि विराग ने से लिखा, जीत गांगुली ने कंपोज किया। 3:19 और अब 3:20 और आप सुन रहे हैं 3 का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 FM रेनबो। और अब से 10 मिनट में आपके सामने पेश करूंगी आज का प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। तो चलिए 10 मिनट को यूटिलाइज करें और एक और गीत आपके सामने रख रही हूँ, और ये है अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपादा की आवाज़ में।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: टू स्टेट्स से आपने सुना इस गीत को, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय ने संगीतबद्ध किया। 3:25 और दोस्तों बुरी बात यह है कि समय अब कम है, पर अच्छी बात यह भी है कि अभी भी कुछ समय है। तो चलिए एक और गीत हो जाए अजय गोगावाले और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और धड़क फिल्म का ये गीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है, अजय अतुल ने संगीतबद्ध किया। और इसी के साथ इस गीत के बाद सीधे चलेंगे NCERT हमारे प्रायोजित कार्यक्रम की ओर, और मुझे दीजिए इजाज़त, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक के, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और रहिए व्यस्त। सुनिए ये गीत धड़क फिल्म का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गाँव में। जी तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी

0: सी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं। हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच माउली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से तो हमारा आज का प्रश्न है, माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज के अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: हाँ, 2000 साल पहले।
5: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
5: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
5: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
5: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
5: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
5: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।

0: नानी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
1: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
2: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
1: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना। अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए। आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
0: नाना जी, पुरातत्वेता किसे कहते हैं?
2: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
3: बेटी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
0: अच्छा,
3: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
2: मामा जी, मामा जी।
4: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
0: बहुत अच्छी तरह मामा जी। आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
0: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
4: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष।
4: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
0: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
4: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
0: अच्छा।
4: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
4: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा।
4: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा।
4: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
0: अच्छा।
4: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
0: एपिग्राफ।
4: शाबाश निधि।
0: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
4: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख

0: पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion, Passepartout.

और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार उमंग।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: 7:03 आप सुन रहे हैं छायालोक अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं रहूंगी आपके साथ 8 बजे तक। और आज है फ्राइडे, यानी कि आज का हमारा सेगमेंट है सेलुलॉयड सुपरहिट्स।
2: सेलुलॉयड सुपरहिट्स।
1: और चलिए छायालोक की शुरुआत करते एक बेहतरीन गीत के साथ। और इस गीत को मैंने चुना है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से।

अमिताभ भट्टाचार्य के बेहतरीन अल्फाज के साथ प्रीतम का था इसमें बेहतरीन संगीत। और सेलुलॉयड हिट्स में दोस्तों, आज सेलुलॉयड सुपरहिट्स में हम बात करते हैं सुपरहिट फिल्म्स की और उनके बिहाइंड द सीन्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। बताऊं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक सीन है जहां पर शाहरुख खान यानी कि राज अपनी सिमरन को कहता है पलट पलट पलट, और वो मुस्कुराते हुए घूमती है। लेकिन आप ये नहीं शायद जानते कि ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट में था ही नहीं। जी हाँ, डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा का मानना था कि राज को अपने प्यार का इजहार इस तरह से करना चाहिए जो बहुत सीधा ना हो, कुछ हटके हो। उन्हें आई लव यू कहने के बजाय पलट कहना चाहिए, और सिर्फ पलट, और देखना चाहिए कि क्या सिमरन पीछे मुड़कर देखती है। अगर उसने ऐसा किया तो इसका मतलब होगा कि वो भी उसे प्यार करती है। शाहरुख खान को पहले ये सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ये काम करेगा, पर जब उन्होंने सीन शूट किया तो काजोल ठीक उसी तरह से पीछे मुड़ी, और यही आदित्य चोपड़ा ने सोचा था। और ये पल इतना परफेक्ट था कि ये बॉलीवुड के सबसे फेमस रोमांटिक इशारों में से एक बन गया। और अब जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सीन के बारे में हमने बात की है, तो इस फिल्म का एक रोमांटिक सॉन्ग तो बनता है। तो चलिए सुनते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत।

और चलिए सेलुलॉइड सुपरहिट्स में एक और BTS आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है बाजीराव मस्तानी के सेट से। बता दूँ कि बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह की एक्टिंग का कोई जवाब नहीं था और ये हम सब ने देखा। और बता दूँ कि इस महाकाव्य फिल्म को फिल्माने में प्रैक्टिकल लाइफ में वास्तविक जीवन में उनको खतरों का भी सामना करना पड़ा। जब वॉर सीन्स की शूटिंग होती तब एक बार गलती से रणवीर सिंह ने सेट पर एक खुले बिजली के तार को छू लिया था और उन्हें एक जोर का झटका लगा था। इसे सब सेट पे बहुत टेंशन में आ गए थे पर वो जल्दी ठीक हो गए और अपनी शूटिंग कंटिन्यू रखी। और यदि चैलेंजेस की बात करें तो इस फिल्म में उनके लिए चैलेंजेस एक नहीं थी। उन्होंने हॉर्स राइडिंग, तलवार की लड़ाई में भी ट्रेनिंग हासिल की और यहाँ तक कि योद्धा पेशवा बाजीराव को जीवंत करने के लिए अपना सिर भी मुंडवा लिया। और ये उनके डेडिकेशन को साबित करता है। और अब बाजीराव मस्तानी से जावेद बशीर की आवाज़ में ये गीत, जिसे AM तुराज ने लिखा है और संजय लीला भंसाली ने किया है संगीतबद्ध।

722 और आप सुन रहे हैं सेलुलॉइड सुपर हिट्स ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और छायालोक का आज का सेगमेंट है सेलुलॉइड सुपर हिट्स, यानी कि सेलुलॉइड सुपर हिट्स में हम बात करते हैं उन सुपर हिट फिल्म्स की और उनके बीटीएस की, यानी कि बिहाइंड द सीन्स की। अभी मैंने बताया बाजीराव मस्तानी के एक इंसिडेंट के बारे में जो सेट पे हुआ था। एक और फन फैक्ट आपको बताऊं बाजीराव मस्तानी फिल्म की, वो ये है कि मल्हारी गाना जो हाई एनर्जी सॉन्ग था, जो अनफॉरगेटेबल सॉन्ग था जो है, तो उसकी यदि बात करें तो शायद ही आप जानते हैं कि इस प्रभावशाली गाने में एक ही टेक में शूट किया गया। एब्सोल्युटली यस, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली चाहते थे कि गाना कच्ची ऊर्जा से भरा हो, इसलिए उन्होंने रणवीर सिंह से अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगाने को कहा और बिना रुके डांस करने के लिए कहा। रिजल्ट, एक हाई एनर्जी परफॉर्मेंस जिसे कई रीटेक की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने, रणवीर सिंह ने एक अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस दिया और उनके जुनून ने, उनके उस हाई वोल्टेज एनर्जी ने उस गाने को बॉलीवुड का सबसे शक्तिशाली, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉन्ग्स बनाया। विजय गान, जी हाँ। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं और ये जो गीत आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ मल्हारी, उसे गाया है विशाल ददलानी ने।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सेल्यूलॉइड सुपर

250 से अधिक असली डॉग्स का, असली कुत्तों का इस्तेमाल किया गया है. इंटरेस्टिंग. और 7:37 इज़ द टाइम. आप सुन रहे हैं सेल्युलॉयड सुपरहिट्स अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक. और बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो मैंने चुना है फिल्म क्रिश को, और बताऊं कि क्रिश की शूटिंग के दौरान डूबने के करीब थे ऋतिक रोशन. बता दो कि सुपरस्टार स्टंट स्क्रीन पर शानदार दिखते हैं, पर रियल लाइफ में ये अनबिलीवेबली रिस्की भी होते हैं. क्रिश के लिए पानी के नीचे एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन पानी के अंदर फंस गए थे, और सरफेस पर पहुंचने के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा. चालक दल रेस्क्यू टीम तुरंत उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ी, और वो सही सलामत बाहर आ गए. और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई. ऋतिक रोशन ने सुरक्षित होने के बाद शॉट को फिर से करने पर जोर दिया. That is the dedication. और खतरनाक एक्शन दृश्यों से लेकर उनके गुरुत्वाकर्षण विरोधी छलांग तक उन्होंने अपने स्टंट करने के लिए खुद से जोर दिया, और इसलिए शायद क्रिश भारत की पहली सच्ची सुपर हीरो फिल्म बनी. और चलिए सुनते हैं क्रिश फिल्म का ये गीत.

ये थी सोनू निगम की आवाज और 7:45 आप सुन रहे हैं छायालोक के अंतर्गत सेल्युलॉयड सुपर हिट्स विथ योर आरजे पलक ओनली ऑन 107 FM रेनबो दिल से दिल तक। दोस्तों लगान फिल्म यदि आपको याद है तो आमिर खान ने लगान में बता दो आपको कि तेज बुखार में एक महत्वपूर्ण दृश्य को फिल्माया था। लगान की शूटिंग करना बिल्कुल आसान नहीं था। फिल्म की शूटिंग गुजरात के भुज में यानी कि उन ट्राइंग कंडीशंस में हुई थी जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और जिसमें सारे एक्टर्स ने चिलचिलाती धूप में घंटों बिताए। इससे भी अधिक इम्प्रेसिव ये बात है कि आमिर खान ने तेज बुखार में क्रिकेट मैच के सबसे इम्पॉर्टेंट सीन्स को शूट किया क्योंकि वो जानते थे कि इवन इफ ही वॉज फीलिंग वीक वो शूटिंग को स्थगित नहीं कर सकते। और उन्होंने इस शूटिंग के जो का जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाया और ये इंश्योर किया कि भुवन का जो बड़ा पल है ऑन स्क्रीन वो उतना ही इम्पैक्टफुल हो जितना कि डायरेक्टर चाहते हैं या जितना वो सीन डिजर्व करता था। और इसलिए शायद आमिर खान को हम सब मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं लगान फिल्म का ये अगला गीत A.R. रहमान श्रीनिवास की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत बद किया है A.R. रहमान ने।

7:53 आप सुन रहे हैं छायालोक के अंतर्गत सेलुलॉयड सुपरहिट्स अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और दोस्तों, वक्त को फिर कुछ वक्त देने का वक्त हो चला है। आपकी आरजे फ्रेंड पलक के पलक झपकाने का समय हो गया। मुझे दीजिए इजाज़त, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त। और इसके बाद आपको ज्वाइन कर रहे हैं आरजे रोशन। फिलहाल सुनिए विशाल ददलानी की आवाज़ में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ये बेहतरीन गीत। और दीजिए मुझे इजाज़त, गुड नाइट, शब खैर, ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास सभी का।

बस आपको डायल करना है 2213-1341 और लेकर आना है अपनी फरमाइश। आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार का आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है।

भाई दोस्तों चैन कैसे आएगा, लाइन अभी मिली नहीं आपको, बातें हुई नहीं, फरमाइश आपकी पूरी हुई नहीं, तो चैन कैसे आएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, 2213-1341 पर आपका ये रेडियो वाला दोस्त रात के 9 बजे तक आपसे बातें करेगा। 9 बजे तक नहीं कर सकते, 8:55 तक तो शायद बातें होंगी, उसके बाद आखिरी गीत बजकर शायद बातें नहीं हो पाए, लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए और इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। जी हाँ, नंबर है हमारा 2213-1341 और उसके बाद आपसे बातें होंगी, प्यार भरी बातें। नंबर एक बार फिर से बता दूं, 2213-1341, इंतजार है आपके फोन कॉल्स का आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरारका को।

0: भाई किसी ने सच ही कहा है कि जानते तो ये दो ही प्रेम करने वाले हैं, तीसरा भला क्यों जानेगा। फिलहाल हमारी एक कॉलर फ्रेंड आई थी, उन्होंने गाने की फरमाइश की और उनकी लाइन कट गई। तो भाई नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनकी पसंद का गीत मुस्कान फिल्म का मैं बजा देता हूँ, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। और फिलहाल आइए भाई, 2213-1341 पर आपका दोस्त इंतज़ार कर रहा है।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: चलिए भाई, फोन की बत्ती बता रही कोई कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: प्रशांत ठाक बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ, मुझे बरसात वाली एक गाना सुनना है, गोपी चिकन फिल्म से, पूर्णिमा कुमार सानू का गा हुआ, भीगी हुई है। हाँ जी
0: जी,
1: टकरी ना खोल बरसात में।
0: अच्छा प्रशांत जी, बारिश बहुत हो रही है क्या आपके यहाँ?
1: ऐसा नहीं, बारिश तो सुबह से हो रही है मगर थोड़ी थोड़ी हो रही है।
0: अच्छा, तो
1: ज्यादा जोर से नहीं हो रही।
0: तो आपको क्या अच्छा लगता है?
1: सारा दिन भर ही हो रहे हैं।
0: सारा दिन भर हो रहे हैं, मतलब सूरज भगवान का दर्शन नहीं हुआ है?
1: नहीं।
0: हाँ जी,
1: कभी हुआ है, दोपहर को हुआ था एक बार।
0: अच्छा जी, एक बार हुआ था। ओके। नहीं यार, मतलब बारिश का गाना आप सुनना चाहते हैं, मतलब इसलिए सोचा कि जरा आपसे पूछ लें कि क्या हाल है आपके।
1: हाँ, बारिश हो रही है, तो हो रही है बाहर बारिश।
0: चलिए,
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते।

0: Hello.
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते नमस्ते जी,
1: हम सेवलापुरी से हर्षद दत्त बोल रहा हूँ।
0: बोलिए दत्त जी, कैसे हैं?
1: अच्छे हैं। अभी पानी गिर रहा है थोड़ा सा, समूचा दिन ही बस का थोड़ा है।
0: क्या बात है, तो अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है?
1: हाँ हाँ
0: अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, हमें वो गाना सुना दीजिए, छलिया फिल्म का, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा।
0: अच्छा असल जी, कभी गाना वाना गाते हैं कि केवल सुनते हैं? क्या शौक है आपको?
1: हाँ
0: मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कभी गुनगुनाते भी हैं या केवल गाना सुनते हैं?
1: नहीं नहीं, हम तो देखिए बचपन से मतलब रेडियो मेरे पास तो टीवी हुई कुछ नहीं है, दो रेडियो है दोनों कमरे में, तो सुबह से रात 11 बजे तक रेडियो सुनता है और गाना सुनता। मैंने बहुत पुराना फिल्म देखा है, मेरा तो उम्र हो गया 75 साल।
0: नहीं नहीं,
1: तो
0: मैं
1: गाना गुनगुनाते हैं जो, जो
0: हाँ, तो जरा सा तो, अगर गुनगुनाते हैं जरूर, आपकी बातों से लग रहा है कि आप गाना गुनगुनाते हैं, तो जो गाना आपने पसंद किया है अगर आप थोड़ा गुनगुनाए तो सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्ट।
1: दम दम डिगा डिगा मौसम भीगा,
0: थोड़ा धुन में दादा।
1: उतना धुन में नहीं आता है तो हम थोड़ा दूसरा गाना।
0: अच्छा चलिए ठीक है, आपकी पसंद का है ये गीत।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में 7:08:34 हुए हैं। आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मरार का आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है। नंबर है हमारा 2213-1341। नंबर एक बार फिर से बता दूं, 2213-1341।

0: हेलो हेलो हेलो। भाई हमारे कॉलर फ्रेंड आए थे लेकिन बात बिना किए चले गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम ये नहीं जानते कि कौन थे, ना तुम जानो ना हम। चलिए यही गीत सुनते हैं लकी अली की आवाज में।
1: राज,
2: हे नीता, तुम्हारी मौजूदगी में उसकी मौजूदगी गुमशुदा क्यों है?
1: कौन? ओ सानिया, वो तो सुबह ही गुम होगी, लेकिन आप इतने सुमसुम क्यों हैं?
2: तुम्हारी कजन सोनिया की वजह से मैं खुद समझ नहीं पा रहा। उसकी एक नजर ही काम कर गई, मैं बता नहीं सकता नीता। वो जिस तरह मुझे देख रही थी, मैं वो आंखें भूल नहीं सकता जिनमें कई सवाल थे। क्या कुछ लिखा था उसके चेहरे पर? सो सिंपल, सो इनोसेंट। और फिर उसका इस तरह चले जाना, आई मीन जस्ट लेफ्ट सो मेनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, यू नो।
1: टू मच, ओह वाओ राज, दैट इज सो रोमांटिक। अगर तुम यही डायलॉग ना सोनिया को कहते तो वो अभी इसी वक्त बेहोश हो जाती।
2: नीता, You've got to help me. मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ क्या वो भी एग्जैक्टली वही फील कर रही होगी।

सह चुकी हो। तुम पर क्या बीती होगी इसका तो शहर में अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो सोनिया, तुम भूल रही हो कि जिंदगी अब भी तुम्हारे

0: चलिए दोस्तों, कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए। हेलो,
1: तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे ओ। नमस्कार राहुल जी।
0: नमस्कार नमस्कार, लेकिन जान को हथेली पे लेकर नहीं आना है भाई साहब। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं श्याम कुमार चंचल बोल रहा हूँ।
0: बोलिए।
1: और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: और यही एक जरिया है अपने दिल की बात कहने का
0: जी,
1: आपके चैनल पर।
0: जी जी।
1: और आप कैसे हैं बताइए?
0: मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई, गाने की फरमाइश।
1: चैनल के द्वारा ही तो हम आपका हाल चाल पूछते हैं।
0: क्या बात है। हाँ हाँ, नहीं मौसम अगर अच्छा हो तो आप समझिएगा कि हम भी अच्छे हैं, है ना?
1: सब ठीक हो।
0: देखिए एयर AIR है ना, हवा में आपको लगे कि मौसम अच्छा है, मतलब AIR के सारे लोग अच्छे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना? और हम अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, क्योंकि आपके बिना हम अच्छे हो नहीं सकते।
1: वो तो ठीक है।
0: हाँ, बताइए।
1: हम सभी ठीक रहेंगे तो बिल्कुल आपको भी अच्छे ही रखेंगे हम ना।
0: यस यस यस, आप अच्छे रहेंगे तभी हम अच्छे होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बस जो मैंने सुनाया है वही सुना दीजिए आप।
0: अच्छा, एक बार फिर से सुनाएंगे आप?
1: हैं जी,
0: एक बार फिर से सुनाएंगे आप?
1: अब नहीं, फिर कभी मैं जरूर सुनाऊंगा आपको।
0: नहीं कुछ थोड़ा,
1: सुनाऊं आपको फिर?
0: जी जी जी।
1: प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो।
0: चलिए ठीक है श्याम जी, मिलने मिलाने का वादा रहेगा। फिलहाल आपकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी 8:55 हो चुकी है अब और फोन कॉल्स मैं नहीं ले सकता फिलहाल आज के लिए। तो कार्यक्रम का आखिरी गीत चाहिए सुनवाता हूँ आपको सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म बॉर्डर से, और इसके साथ ही आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मिरारका को ही आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा किसी अगली शाम। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: लव शॉर्ट से आज सुन ले सौमीर लेखा सेकेंड चांस। गल्पे नरेशने आत्रेय मोइनाक अरिजित पलाश राजीव दीपमाला अपरूपा।
1: Love Junction every Friday at 9 p.m. only on 107 FM Rainbow.